0: Cuelga, cuelga, cuelga. Yulera, no, no, no,
1: no, no,
0: no, no, no,
2: शिवपुर देखी हो कुदे कसी पाय चुरी खेल नाचुस के हैन खेल गरे को साथे हो भने को चुरी खेल नाचुस के मन के सानी सानी है न काली नानी की ना हाथे मुस्के झपे झर गर्भा को छैन।

नंबर को पातलाई दुई नंबर बसी का तीन नंबर मागतेर के लाई तिम्रो हाम्रो बेला तीन नंबर मागतेर

0: भीमेश्वर मंदिर में दर्शन कर आने भक्तजन में हार्दिक अनुरोध
1: विभिन्न धर्मावलम्बी साझा आस्था को धरोहर विश्व विख्यात श्री श्री श्री भीमेश्वर भीमसेन भीम नारायण भीम भैरव भगवती महानकाली भगवान बुद्ध किरातेश्वर महादेव महारुद्र भीम राणेश्वर आदि भगवान को एक शिला सहर्ष अवतार को रूप में पूजिने भीमेश्वरलाई आफ्नो विधि अनुसार पूजा पाठ गर्दा तपसिल का विषय में ध्यान दी आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्न गराउन हुन सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

जिसे अपनी दुनिया समझा वही दुनिया उजाड़ गई, जिसके लिए हर दुआ की वही मुझे छोड़ गई। हमने तो दिल देकर सिर्फ मोहब्बत मांगी।

विश्लेषण मनोरंजन साहित्य और कला संस्कृति पर्यटन र विकास कला जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।